गगन पौणे पाणि वाहि। सूतक भोजन जीता किस खाही, असूतक करमन पूजा हुए, नाम रति में निर्मल हुए, सतगुर सेवे असूतक जाय, मरण जन्म काल न खाई। सासत सिमरत सूत देखा कोए, बिना वैको मुक्त न हुए, जुग चारि नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख त्रस पार।

दुख पाई। नाम रति सदा बैरागी गृह अंतर साच लिवलागी। नानक सतगुर सी वह सिवट पागी। गौड़ी महला तीजा।

अनहद वाणी शब्द बजाई, सदगुरु जी कवन कवन सीधो मेरे पाई, भक्ति सीधे दर सुबह पाई, नानक राम नाम वडियाई।

त्रेग त्रेग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न हुई सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोई हर नाम बिनाम अवर न कोई सतगुर ते हम गात पत पाई हर नाम त्याया दुख सगल मिटाई सदा नंद हर नाम लिवलाई गुर मिलया हमको शरीर सुध पाई हम तृष्णा सवगन बुझाई।

रंग रतड़ी मन कर हरि, हर रंग सदा समाल, हर रंग कदी न उतर, गुरु सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन कर हरि, हर तरवर पुरख अकाल, बड़ भागी गुरु मुख पाया।

जुए संवारे तिस्को पवनाहि जुए संवारे सो नाम संवाहि जुए संवारे तिस्की तृष्णा बुझे जुए संवारे सो तरगह सिज जुए संवारे सो तनवंता जुए संवारे सो पातवंता जुए संवारे सो जाति जुए संवारे तस हुआ गति जुए संवारे तिस्का आया गनी जुए संवारे सो निह चलतानी जुए संवारे सो बट पागा।

वंदक सहोदरा गुरुदेवदाता हरनाम उपदेश है। गुरुदेव मंत निरोधरा गुरुदेव शांत तत्वद मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर।

करने हो। होवन हार होत सद आया वाका अंत न काहु पाया। कीट हस्त में पूर समाने प्रगट पुरख सब ठाऊ जाने। जाको दीनो हारस अपना।

परी श्लोक गान मेन देखो मने माहे सरपर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटे नानक नाम अरोग पौड़ी गग्गा गोविंद गुण रवो सास।

सो होए। ऐल मैल तां को मिले जाकू साध कृपाल, साधु संगत तो वसे जो आपन होए दयाल। टोहे टाहे पो पवन बिन नावें सुख नाहीं, डले जाम के दूत दे जो साधु संग समाए। बार बार जाओ संत सदके, नानक पा बिना से कदके। सलोक ठाक न होती तिनों दर, जे होवो सो प्रसन्न। जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते तन धन पौड़ी। ठठा मनुआ ठाह हे नाहीं, जो सगल त्यागे कै लपटाई। ठहक ठहक माया संग मुए, पुआ के कुशल न कतहु हुए। ठंड परी संत संग वसया, अमृत नाम तहां जी रसिया। ठाकुर अपने जो जन पाया, नानक वाका मन शीतलाया। सलोक

का संजमो गुर कै शब्द पछान। या डेरा को श्रम कर कालै जाका तसु नहीं संग चालै। वा डेरा की सोमित जानै जाको दृष्ट पूर्ण भगवानै।

सिख लेहो, प्रीत करो सद एक सिहोया, साचा असनेहो। कारण करन करावनु साबिद एकै हा, जितित लाभो तितित लगै, नानक जंत अनाथ श्लोक। दासै एक निहारिया सब कुछ देवनहार, सा सा सिमरत रहै, नानक दर्श आधार पौड़ी।

नानक सुख निवास पौड़ी, दल्ला लावो औखत जाहू, दुख दर्द मिटे खिनाहू। नाम औखत जे हृदय हितावै, ताहे रोग सुपने नहीं आवै। हर औखत सब कट है पाई, गुरपूरे बिन विद न बनाई। गुरपूरे संजम कर दिया, नानक तो फिर दुख न थिया। सलोक वासुदेव सर्वतन में ऊना कतहु उठाए।

कथा अष्टपदे साधक संगमुख उज्जल हो सा संगमल सगली खोत साधक संग मिटय अभिमान साधक संग प्रगट है सुग्यान साधक संग पुजे प्रभ नीरा साध संग सब होत नवेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधकी महिमा वरने कौन पुरानी नानक साधकी शोभा ब्रह्माए सुमानी साधक संग अगोचर मिले साधक संग सदा पर फुलै साधक संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग ना कतहूं तावै साध संग अस्थित मन पावै साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सा मीत साधु कै संग महापुनीत साध

ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म

निमुख ठाकुर नमस्कार नानक परस सगन पार अष्टपदी मिथ्या नाहीं रसना परस मन में प्रीत दर्शन पारत्रय रूप न पेखै नेत्र साधकी टहल संग संग हित करन न सुनै काहू की निंदा सबते जन आपस को मंदा।

चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरहो हर तन के पर लेहो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद।

रास पियारी। जे रस बिसर गए रस औरहा, और मुए क्या रोइया जो आपा थिर ना रहाए। जो पजै सो बिन सै दो को रोवै बलाए। जय

तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भय है, एक कै देख मन पतियाए। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह भी बुद्ध हर लई मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। गौड़ी खट ने मकार कोठी बांधी, बस्तन बीच पाई। कुंजी कुल पुराण कर राखे, करती बारन लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होय कै जन्म गवायो। चोर मुसा घर जाई रा, पंच पहरुआ दर में राती। तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चित होए रहो। तौला प्रगास उजारा, नौ घर दे सुकामन भूली। बस्तन उपना पाई, कै कबीर नवै घर मूसै। दसवें तत् समाई, गौड़ी माई मोहे अवर ना जानियो आ नाना।

निर्मीठ मन किया तीरा। जेन ठग ठगया सगल जग कावा, सू ठग ठगया ठौर मनावा। डडा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर रहिया समाई। जाओ डर डरै ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर उर हो पागे। टडा टेग टूडह गत्याना, टूट धी टह गए प्राणा। चढ़ समीर टूट जवावा, जिह गड़ गड़ियो सो गड़ मह पावा।

तार तरियो न जाई। तान त्रिपवन में रहियो समाई, जब त्रिपवन तान माही समाव तब तह तत मेरी सच पाव तथा अथाह थाह नहीं पाव अथाह इहु थिर न रहाव। थूड़ थाल थानक आरंभ विनहि थाब थाब है मंदिर थम्भ।

कहे। जया जो जन तो धर्म धान कर बस कया गुराण रुत पाजन सूर थारो नाउ रारा रस नरस कर जानियो हुए नरस सूरस कह जानियो इह रस छड़ियो हरा सियावा उह रस पिया इह रस नहीं पावा ललाय सिले मन लावे अनत न जाय परम सच पावे आर जाओ तहां प्रेम लिवलावे।

सुध कर बृहस्पत विख्याति बहाये तीन देवी संगलाये तीन नदी तह त्रिकुटी माहे अहन स कसमल तो वह नाही।

प्रसाद देवा पाहुन तारी अले राम कहत जन का सना तरी रहा उतारी ले गन का व्यंद रूप गुब जा ब्याद अजामल तारी अली।

सोई सोई सदा सच साहिब साचा सच नाई है। पी हो सी गाय ना जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पैती जिन सी माया जिन उपाई। कर कर दीखा कीता या प्रणा ज्यों तिस दी वडियाई। जो दस पावै सोई कर सी फेर हुक्म न करना जाई। तू पैत साहू साह पत साहिब नानक रहन रजाई। असम हला चौथा सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन। हर अगम अगम अपर सबति आवह तुद जी।

नंद सखा सेन प्रेम गोविंद अपि क्रिया पि बक्षिंद तान मन हर प्याग जिंद झूठ विकार महा दुख दीह पीख वरण दिशा सब कीह जो उपज स्वाव जाय नानक स्थिर नाम रजाई अस महला पहला इको सर्वर कमल अनूप सदा विकास परमल रूप उजल मोती चुग हंस सर्व कला जगदीश अंश ज्योतिष सोपज बिंस

पारियो वैक्या मत शुष पाऊ तरी गुरकी साखे अमृत बाणी पीवत ही प्रवाण पया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त वैकुंठ कर किया स्वृति रत्ता सत वै रागी जुए जन्म न हार कहना सुन परथर जोगी की वा अमृत तार आसा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदू सतान डराया पै दूसन दे करता जाम कर्म कर चढ़ाया इति मार पई कर लाणी तै की दर्द न आया करता तू सब न का सोई।

चेतलाय भगतरती यदन सचि सूय नानक नारते सुहोय आसा कार्य अठम काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर कै पाण सतगुरु मिले सच सोजी होय गुरु प्रसाद मन वसा हर बूझे सोई मैं सहदा ताई कह अवर नाही कोई गुर कृपा ती मन वसै ता सदा सहोई रहा एक इस जोग मह निरपव हर नाम है पाइए गुर विचार बिन लावे जम कै वास है मन अंत गुवार हर कै पाण जन सेवा करे बूझे सच सोई

जान सोए। जन नानक गुरु मुख प्रगट हुए। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद रागया सा कर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल, आपने सवाई हमारा तड़ा हर है समाई।

प्रसाद राज मलक जोवन करे सोभा रूपवंत जवानी बहुत दरब हस्ती कर घोड़े लाल लाख बै आनी आगे दरगे कामना आवे छोड़ चले अपमानी काहे एक बिना चेत लाइए उठत बैठत सोवत जाग सदा सदा हर त्याई रहाओ महापचित्र सुंदर आखाड़ी रण मह जिते पवाड़ी हाउ मारा हाउ बंदा छोटा मुख ते एव पवाड़ी आया हुक्म पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़ी कर्म धर्म जुगत बहु करता करण हर न जान उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नागा आया नागो जासी त्यो हस्ती खाक छाने संत सज्जन सुनहो सब मीता झूठा एहो पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गबारा

सगल जगत धंद अंध को जागै हर जन महामोहनी मगन प्रिय प्रीत प्राण को त्यागै बिरला चन कमल आनूप हर सत मत कौ लागै साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड़भागे कृपा एक ओंकार सतगुर प्रसाद रागासा घर छेवा महला पंजवा जो तुझ भावै सो परवाना सुख सहज मन सोई करण कारण समरथ पारा अवर नाही रे कोई तेरे जन रसिक रसिक गुण गाव है मसलत मता सियाणप जन की जो तू कर है कराव है रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारी साथ संग रस पाया त्रिपति अगाई से जन पूरे सुख निदान हर गाया जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी ता कौ नाही चिंता जा कौ दया तुम्हारी होई से साह भले भगवंता परम मोह।

जाए पचावै। निंद कहला जन्म गवाया, पहुँच न साके काहू पातै, आगे ठाउर न पाया रहाओ किरत पया। निंदक पपरी का क्या ओह करै बेचारा, तहा बिगुता जह कोई ना राख ओह किस पह करे पुकारा। निंद की गत कद हूं ना ही कसम ए वह भाणा, जो जो निंद करे संतन की त्यो संतन सुख माना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रड़ाई। आसा महला पंजवा, बाहर तोए अंतर मन मैला, तोए ठौर अपने खोए, इहा काम क्रोध मोह व्यापिया आगे मोस मोस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा वर्मी मारी, साप ना मरई नाम ना सुनई डोरा रहाओ। माया की करत छोड़ गवाई।

व्यापै। तेरा आलस्य कहा गयो री रहाओ। काम क्रोध अहंकार गाखरो संजम कौन छुटक्यो री। सोर नर देव असर त्रै गुणिया सगलो भवन लुट्यो री। दावा अगन बहुत त्रिण जाले कोई हरिया बूट रहो री। ऐसो सम्रथ वर्ण ना साका ताकि उपमा जात ना कहे ओरी। गाजर कोठ मह पई नकारी निर्मल परण बने ओरी। महामंत्र गुर हृदय बस्यो अचरज नाम सुन्योरी। कार कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई।

निकट आन प्रिय सेज तरी कान कटन ते झूठ परी मंत्र मेरा शब्द उजारा आनंद बनोती कसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया फिर सुहाग नानक जन पाया आसा महला पंजवा साच नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा बाहर सूत सगल ज्यो मौल स्यो मौला अलिपत रहाओ जैसे जल मैं कौला रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता जी संग प्रभ अपना धरता दीस आवत है बहुत पी हाला सगल चन की मन राला नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया आसा महला पंजवा पावत रलिया जोगण बलिया नाम बिना माटी संग रलिया कान कुंडलिया बस्त्र ओढ़ लिया सेज सुखलिया मन गर बलिया रहाओ तलै कंचरिया सिर कानक छतरिया हर भगत बिना ले धरण गडलिया रूप सुंदरिया अनक इसतरिया हर रस बिन हर सब स्वाद फिकरिया माया छलिया पिकार बिखलिया सरण नानक प्रभ पुरख दयालिया आसा महला पंजवा एक बगीचा पेड़ घन करिया अमृत नाम तहा मैं फलिया ऐसा करहो विचार ज्ञानी ताते पाईऐ पाद निरपानी आस पास बेखुआ के कुंटा बीच अमृत है भाई रे रहाओ सिंचन हारे एक है माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस पद आन जड़ाई सगली फूली।

शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार नरक स्वर्ग फिर अवतार ग्रस्त वह चिंत उदासंकार कर्म करत जीव कौ जंजार प्रभ कृपा ते मन वस आया नानक गुरमुख तरी तिन माया सात संग हर कीर्तन गाइया एहो अस्थान गुरु ते पाइया रहाउ दूजा आसा महला पांजवा करमै सुख बाहर फण सुखा हर सिमर सगल बिनासे दुखा सगल सुख जा तू चित आवै।

तेरे की आस मन धारी, जब तब संयम कर्म ना साधा, ना प्रभु का मन है अराधा। के चुना जाना मात मेरी थोरी, बिन वत नानक ओट प्रभ तोरी, आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए एह माला। जपत जपत भय दीन दयाला, करो बेनती सतगुर अपनी कार, किरपा राखो सरनाई, मोका देहो हरे हर जपनी राहो। हर माला और अंतर धार, जन्म मरण का दुख निवार, हृदय समाल मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कत है ना डोले। कहो नानक जो रचै नाए, हर माला ता कै संग जाए, आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए। तिस जन लेप न व्यापक कोय, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करै सोई भल जन कै अत निर्मल दास, की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया। तिस

भाई उन सब सक खाया, हम गुर राखी मेरे भाई रहाओ पाए ठगोली। सब जग जोया ब्रह्मा विष्णु महादूम होया, गुरमुख नाम लगे सी सोया। वर्त नेम कर था के पुनः चरना, तट तीर्थ भवे सब धरना।

संत प्यारे जिस प्रसाद ब्राह्मण वासी अरहाउ जाका दांत खुटे नाही भली भांत सब सह समाही जाकी बस न मिटै कोई मन बसाई है साचा सोई सल समग्री गृह जाके पूर्ण प्राप के सेव दुख न चूरन ओट गई निरभौ पद पाइये सा सा सुगन गणित गाइये दूर न हुई कद हूँ जाइये नदर करे त हर हर पाइये अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर धन रास आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सगल हो काओ मन सगल को हुआ सुख कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल जाओ बल बल ते सतगुर को जाओ गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सो सब दुख बनासी सतगुर की शरणाई रहाओ करके जन हृदय बसाए मन चिंत सगले फल पाए अगन बुझी सब होई शांत कर कृपा गुर की नीदात निथावे को गुर दीनो थान नमाने को गुर की नो मान बंधन काट सेवा कर राखे अमृत बाणी रसना चाखे बड़ा भाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभु सरना गुरु नानक जा को भया दयाला सो जन हुआ सदा निहाला आसा महला पंजमा सतगुर साचै दिया भेज चिर हो चिर जीवन उपजया संजोग उतरै माहे आए किया निवास माता के मन बहुत विकास जम्या पूत भगत गोविंद का प्रगटिया सब मैं लिखिया तुरका रहाओ दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया मिटिया सोग महा आनंद थिया गुरवाणी सकी आनंद गावै साजे साहिब कै मन भावै बदी वेल बहु पीढ़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली मन चिंदिया सतगुरु दिवाया भय चिंदे गले बुलाया

परवाने। एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। जेव तिस भावै तिवै चलावै, देव होवै फरमान। ओहो वेख्या ओना नदर, ना आवै बहुता एहो विडाण। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। आसन लोए लोए भंडार, जो कछ पाया सो एका वार। कर कर वेख्या सरजन हार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। एक दूजी बौ लख हो हे लख हो वह लख वीस, लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश। एत राहे पत पवड़िया, चढ़िया होए इक्कीस। सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस। नानक नदरी पाई कूड़ी कूड़ै ठीस।

हर बूंद मांगे जप जीवा हर हर चरणा। अमय सरोवरो पियो हर हर नामा राम, संतै संग मिला जा पूर्ण कामा राम। सब काम पूर्ण दुख विदीर्ण, हर निमख मन होना बीसरै। आनंद अन दिन सदा साचा, सर्वगुण जगदीसरै। अगणत ऊच अपार ठाकुर, अगम जाको धामा। बिनवंत नानक मेरी यश पूरन, मिले श्री रंग रामा। कई कोटिक जग फला, सुन गावन हरे राम। हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जप सो हंत प्राणी, ताकि मैं हमा कित गना। हर विसरना ही प्राण प्यारे, चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गए कंठ लाए, प्रभु ऊच अगम अपारे। बिनवंत नानक सफल सब किश, प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवा, शंत अनकाय रातड़िया। वाड़ दुहे दी राम, पाप कमाव दया तेरा कोई न बेली राम। कोई न बेली होए तेरा, सदा पशो ताव हे। गुण गोपाल न जपह रसना, फिर कदहू से देह आवहे। तरवर विशुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौण के ली। बिन मंत नानक बिन नाम, हर के सदा फिरत दुहेली। तू बल वंच डूब करह, सब जाने जानी राम। लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम। किरत कमाणे दुख सह प्राणी, अणक जोन प्रमाया। महा मोहनी संग राता, रतन जन्म गवाया। एकस हर के नाम बाजो, आन कार सियाणी। बिनवंत नानक लेख लिख्या, परम मोह लुभाणी। बीच ना कोय करे अकिरत कण, विछड़ पया आए खरे कठिन। जम कंकर पकड़ दया, पकड़े चलाया अपना कमाया। महा मोहनी रातया, गुण गोविंद गुरमुख ना जपया। तपत थम गल लातया, काम क्रोध अहंकार मूठा। खोए अज्ञान पछतापया, बिनवंत नानक संजोग भूला। हर जा प्रसन्ना जापया, तुझ बिन को नाही। प्रभ राखण हारा राम, पतित उधारण हर बिरद तुम्हारा राम। पतित उधारण सरन स्वामी, कृपा निध दयाला। अंत कूप ते उधर करते, सगल घट प्रतपाला। सरन तेरी घट महाबेड़ी, एक नाम देह आधारा। बिनवंत नानक कर दे राखो, गोबिंद दीन दयारा। सोदन सफल गणिया, हर प्रभु मिलाया राम। सब सुख प्रगटिया, दुख दूर पराया राम। सुख सहज आनंद विनोद, सद ही गुण गोपाल नित गाइय। भज साध संगे मिले रंगे, बहुड़ जोड़ना ताइय। गै कंठ लाए सहज सुभाए, आदि अंकुर आया। बिनवंत नानक आप मिलया, बहुड़ कतहू ना जाया। विहागड़ा महला पंजवा, शंत सुनो बेनंतिया। स्वामी मेरे राम, कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरन कृपा करन मोहन, कल कले सह भंजना। सरन तेरी रख ले हो मेरी, सर्ब मैं निरंजना। सुनत पेकत संग सब के, प्रभ नेर हूते नेरे। अरदास नानक सुन स्वामी, रख ले हो घर के चेरे। तू समरथ सदा हम दीन पेखारी राम। माया मोह मगन कढ ले हो मुरारी राम। लो मोह बेकार बाध्यो, अणक दोख कमावणे। अलिवत बंधन रहत करता, किया अपना पावणे। कर अनुग्रहो पतित पावन, बोह जोन भ्रमते हारी। बिनवंत नानक दास हर का, प्रभ जीव प्राण आधारी। तू समरथ वड्डा मेरी, मत थोरी राम। पाल है अकिरत घणा, पूरण दृष्ट तेरी राम। अगाध बोध अपार करते, मोह नीच कछु ना जाना। रतन त्याग संग्रहण कौडी, पशु नीच आना। त्याग चलती महाचंचल, दोख कर कर जोरी। नानक सरन समरत स्वामी, पैज रख हो मोरी। जाते विछड़िया तिने आप मिलाया राम। साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदा नीके, कल्याण मैं प्रगट भये। सेजा सुहावी संग प्रभ कै, अपने प्रभ कर रहे। छोड़ चिंत अचिंत होए, बहुत दुख ना पाया। नानक दर्शन पेख जीवे, गोविंद गुण निध गाया। विहागड़ा महला पंजवा, शंत बुद बोल सुधर मीड़िया। मोन कद धारी राम, तू नेत्री देख चलिया। माया ब्योहारी राम, संग तेरे कश न चल। बिना गोविंद नामा, देस वेस सुवर्ण रूपा। सगल ऊणे कामा, पुत्र कलत्रना संग सोभा। हस्त घोर विकारी, बिनवंत नानक बिन साध संगम। सब मिथ्या संसारी, राजन क्यों सोया। तू नींद भरे जागत कत नाही राम। माया झूठ रुदन केते, बिललाही राम। बिललाहे केते महामोहन, बिन नाम हर के सुख नहीं। सा स्याणप पाव थाके, जह भावत तह जाही।
ਆਦਿ ਅੰਤੇ ਮਦ ਪੂਰਨ ਸਰਬੱਤਰ ਘਟ ਘਟ ਆਹੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਸੇ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੀ ਨਰਪਤ ਜਾਣ ਗ੍ਰਹਿਓ ਸੇਵਕ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਸਰ ਪਰ ਵਿਛੜਨਾ ਮੋਹੇ ਪਛਤਾਣੇ ਰਾਮ ਹਰਿ ਚੰਦੋਰੀ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਕਹਾਂ ਅਸਥਿਤ ਪਾਈਐ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਆਣ ਰਚਨਾ ਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਈਐ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤਨਾ ਤ੍ਰਿਸਨ ਬੂਝੈ ਨਹਿ ਕਾਮ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਕੇਤਿਆ ਪਛਤਾਨੇ ਧਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰੋਹੋ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਰਾਮ ਭੁਜਾ ਗਹਿ ਕਾਢ ਦਿਓ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਰਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਹਰਿ ਅਰਾਧੇ ਸਗਲ ਕਲਮਲ ਦੁੱਖ ਜਲੇ ਮਹਾਂ ਧਰਮ ਸੁਧਾਨ ਕਿਰਿਆ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਸੇ ਚਲੇ ਰਸਨਾ ਅਰਾਧੇ ਏਕ ਸਵਾਮੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਭੀਨਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਹਰਿ ਮਿਲਾਏ ਸੋ

अहंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड अत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े यार कूड़े फेराहे, असंख मलेच्छ मल पाख खाहे।

प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई, हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवै, होर पहनन की हमारी सरद गई। हर नाम हमारा वणज हर नाम व्यापार, हर नामे की हमको सतगुर कार कुनी दी। हर नामे का हम लेखा लिखिया, सब जम की अगली कान गई। हर का नाम गुरमुख ने विरलै ध्याया, जिन कौ धुर कर्म प्राप्त लिखत पई। श्लोक महला तीजा। जगत अग्ञानी अंध है, दूजे भाए कर्म कमाए, दूजे भाए जेते कर्म करे दुख लगे तन धाए। गुर प्रसादी सुख उपजै, जा गुर का शब्द कमाए, सची बाणी कर्म करे अणदिन नाम ते आए। नानक जित लाए लाए, जित आपे लाए तित लगे कहना।

सोहन सदा सवारी। गाव है इंद इदासन बैठे देव त्या दर नाले। गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारे। गावन पंडित पढ़ नर खीसर जुग जुग वेदा नाले। गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ पाए आले। गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले। गाव है जोत महाबल सूरा गाव है खाणी चारे। गाव है खंड मंडल वर भंडा कार कार रखे तारे।

चेतना आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। ऐ भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भाती, कार कर जनसी, माया जिन उपाय। कार कर वेखै

पंजवा मृतक उपायु तन सासा बिछरत आन मिलाया पशु प्रेत मुगत भय स्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहण ना जाई दुख सोग का ढाहियो डेरा आनंद मंगल विश्रामा मन बांछत फल फिले अजंता पूर्ण होए कामा ईहा सुख आगै मुख उजल मिट गए आवण जाने निरपौ पए हिरदय नाम वसिया अपने सतगुर कै मन भाणे उठत बैठत हर गुण गावै दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करमा जाका गुरचरनी मन लागा सोरठ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागै जाते कछु ना पाइयै पूर्ण पार ब्रह्म परमेसर मेरे मन सदा ध्याइयै सिमरहो हर हर नाम प्राणी मिनसै काची देह अग्ञानी रहाओ मृग तिसना आर सुपन।

न अंतर तुखी। गौर नानक को प्रभु दिखाया जाल थल त्रे पवन रुखी सोरठ महला पंजवा। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा।

एक पल का। हर हर दयाल होवै जिस उपर, सो गुरमुख हर जप जिनका। श्लोक महला तीजा। जन्म जन्म

सब लोग से आने उठ पंडित पै चले निराशा। मन रे सरयो न एक काजा भजयो न रघुपत राजा रहाओ। वन खंड जाए जोग तप कीनो

बैठा उन हर पे क्या लीना। पर यो काल सबै जग ऊपर माहे लिखे परम ज्ञानी। कहो कबीर जन पए खालसे प्रेम भगत जिह जानी। कर दूजा

0: पढ़ी
1: क्या क्या दुनिया, क्या भेद नाना दुनिया। पढ़े सुने क्या कोई, जो सहज न मिले जो सोई।
0: हर का नाम जप सुगवारा, क्या सोचे है बारंबार। रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लहिए। बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहया समाई। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना पतीजै, ना पतीजै तो क्या कीजै। हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलो बस पानी। काया माजस कौन गुणा, जो घट पीतर है मलना। रहाओ लौकी अठ सठ तीरथ नाई, कौरापन तो ना जाई। कह कबीर विचारी, भव सागर तार मुरारी। सोरठ एको अंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर धन लियावै। सुत दारा पहयान लटावै, मन मेरे भूले कपट न कीजै। अंत निबेरा तेरे जीव पहली जै। रहाओ छिन छिन तन शीजै, जरा जनावै।

जी की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जब देखा तब गावा तौ जन धीरज पावा नाद समाय लो रे सतगुर भेटिले देवा रहाओ जह चल मिल कार दिसंता ऐ अनहद शब्द भजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार बीजल तही नेरै नाही दूर निज आत्मै रहया भरपूर जह अनहत सूर उजारा तह दीपक जलै संसारा गुर प्रसादी जानिया जन नामा सहज समानिया कर चौथा सोरठ पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा का पहचान शिवाई।

क्या कहिए तहमें ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा रहाओ। नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने पया भिखारी। अष्टराज बिशरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राज पयंग प्रसंग जैसे है, अब कश मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते अंत न पाया। सर्वे एक अनेकै स्वामी, सब कट भोगवै सोई। कह रविदास हाथ पै नेरै, सहजे होए सो होई। जो हम बांधे मोह पास, हम प्रेम बदन तुम बाधे। अपने छूटन को जतन करहो, हम छूटे तुम्हें आराधे। माधवे जानत हह जैसी तैसी, अब कहाँ करोगे ऐसी रहाओ। मीन पकर फांक्यो अर काट्यो, रांद कियो बहुबानी। खंड खंड कर भोजन कीनो, तो ना विसरो पानी। आपन बापै नाही किसी को, पावन को हर राजा। मोह पटल सब जगत व्याप्यो, भगत नहीं संतापा। कह रविदास भगत एक बाडी, अब एह का स्यों कहिए। जा कारण हम तुम्हें आराधे, सो दुख अज हूँ सही है। दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात अभिवेकै। राजे इंद्र समसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो क्यों कह लेखै। ना बिचार्यो राजा राम को रस, जह रस आंद्रस बिसर जाही रहाओ। जहान अजान पय हम बावर, सोच असोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध, परमार्थ परवेश नहीं। कहियत आन अचरियत अनकश, समझ न पर अपर माया। कह रविदास उदास दास मत, पर हर कोप करहो जी दया। सुख सागर सुरतर चिंता मन, काम तेन बस जाके। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नव निध कर तल ताके। हर हर हरना जप है रसना, अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद विद, चौतीस अखर माही। ब्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सर नाही। सहज समाध उपाद रहत पुन,

नहीं तो रह। तुम स्यों तोर कवन स्यों जो रह रहाओ। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। जह जह जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। तुमरे भजन कटह जम फासा।

जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ, राखो कंध उसार हो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा, बंके बाल पाग सिर डेरी, एहो तन होएगा भस्म की ढेरी, ऊचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ओषा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा राम चंद, कह रविदास चमारा, चमरटा गांठ न जनई, लोग गठा वैपन ही रहाओ, आर नहीं जह तोपो, नहीं राम बीठाओ रोपो, लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हों बिन गांठे जाए पहुचा, रविदास जपै राम नामा, मोह जम स्यों नाहीं कामा, राग सोरठ बाणी भगत भीखण की, एको अंकार सतगुर प्रसाद, नैनो नीर वहै तन खीना, पए केस दुध वानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करह पुरानी, राम राय ओ है बैद बनवारी, अपने संत है लिहो उबारी रहाओ, माथे पीर शरीर जलन है, करक करे जे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पही, वा का औखद नाही, हर का नाम अमृत जल निर्मल, एहो औखद जग सारा, गुरप्रसाद कह जन भीखन, पावो मोख द्वारा, ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राख्या, रतन न छपै छपाया, हर गुण कहते कहन न जाई, जैसे गूंगे की मिठाई रहाओ, रसना रमत सुनत सुख श्रवणा, चित चेते सुख होई, कह भीखन दोय नैन संतोखे, जह देखा तह सोई।

कोए, ताकि सेवा सो करे जाको नदर करे। तुद बाज प्यारे केव रहा सावड़े आई देह, जित नाम तेरे लाग रहा।

पहला चोर सलाहे चीत ना पीजै, जे बदी करे ता तसु ना शीजै। चोर की हामा परे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। सुन मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, बिन बोले बूझिया सचियार रहाओ। चोर सवाल्यो चोर सियाणा, खोटे का मुल एक दुगाणा। जे साथ रखिए दी जैर लाए, जा परखिए खोटा होए जाए।

जिया कहे जोगी जुगत न जाने अंध तीने ओ जाड़े का बंद सो जोगी जो जुगत पछाणे गुर प्रसादी एको जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म बिचारे आप तरे सगले कुल तारे दानस बंद सोई दिल धोवे मुसलमान सोई मल खोवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगह का निशान।

अब था नष्ट जाग भ्रष्ट होए डूबता एव जग कल मह राम नाम सार अखी ता मीटह नाक पकड़ह ठगण को संसार रहाओ आंट सेती नाक पकड़ह सूझते तिन लो मगर पाशै कछ न सूझै एहो पद्म अलो खत्रियां ता धर्म छोड़िया धर्म मलेश भाख्या गही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज पुराण सोदह करह वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास।

ते भगत दृढ़ाई भगत करे जन वडियाई पाए साचर ते सुख सहज समाए साचे का गाहक विरला को जान गुर कै शब्द आप पछाण साची रास साचा वापार सो धन पुरख जिस नाम प्यार तिन प्रभ साचे एक सच लाए उत्तम बाणी शब्द सुनाए प्रभ साचे की साची कार नानक नाम सवार नहार तनासरी महला तीजा जो हर से वह तिन बल जाओ तिन हृदय साच सच्चा मुख नाओ साचो साच संभाले हो दुख जाए साचे शब्द वसै मन आए गुरबाणी सुन मैल गवाए सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ कूड़ कुसत त्रिसना अग्न बुझाए अंतर सांत सहज सुख पाए गुर कै भाण चलै ता आप जाए साच महल पाए हर गुण गाए ना शब्द बूझै ना जाने बाणी मनमुख अंधे दुख विहाणी।

किरपन को अब किस किरपा कीजै, हो दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करीजै। पणत नानक भरम पट खूले पर गुरप्रसादी जानिया, साची लिब लागी है भीतर सतगुर स्यो मन मानिया। तनासरी महला चौथा कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद। जो हर सेवह संत भगत तिनके सब पाप निवारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कह ना सको।

हम छुट काकी हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जप्यो तरह तराकी हर की लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपाव हो अपना हम मांगी भगत का की रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जप्यो हर बचना की लेखा चित्रगुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जप्यो मन हर हर लग

आओ जन का आप सहाई हो आ निंदक पागे हार प्रमत प्रमत ऊहा ही मुए बाहड़ ग्रहना मंजार नानक सरण परयो दुख पंजन गुण गावे सदाया पार निंदक का मुख काला हुआ दीन दुनिया कै दरबार।

सिमर स्वामी सोए। वेद सिमृत कथय शास्त्र भगत करह विचार, मुक्त पाइय साथ संगत बिनस जाए अंधार।

मिल सा संगत होवत परगास। जी अनका दाता पूर्ण सब ठाए, कोट क्लेश मिटह हर नाए, जन्म मरन सगला दुख नासै, गुरमुख जाकै मन तन बासै, जिसनो आप लय लड़ लाए, दरगह मिलै तिसै ही जाए। सेई भगत जै साचे पाणे, जम काल ते पहे निकाणे, साचा साहेब सच दरबार, कीमत कौन कहै बीचार। घट घट अंतर सगले आधार, नानक जाचै संत रेणार।

चरण तुम्हारे हृदय वास है, संतन का संग पावो, सोग अग्न में मन ना व्यापे, आठ पहर गुण गावो, स्वास्थ्य व्यवस्था

पन खोजन जाई सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई रहाओ। उहप मद ज्यो बास बस्त है मुकर मह जैसे शाई तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई बाहर।

जन्म पाए कछ भलो न कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला, घर दूजा अष्टपदियां एको अंकार, सतगुर प्रसाद। गुरसागर रतनी भर पूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस त्योग चुगह प्रभ पावै, सर्वर मह हंस प्राण पत पावै। क्या बग पपड़ा छपड़ी नाए।

राखे सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत हर सहज समाए सर्वर मह हंस हंस मह सागर अकथ कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नारना पुरख कहो को कैसे त्रिपवन जोत रहे लिवलाई सुर नर ना सचे सरणाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वशल पै काटन हारे होमै मार मिले पग धारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल मह आए।

जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझै। कहत कबीर सुनोहरे प्राणी, छोड़ो मन के भरमा, केवल नाम जपोहरे प्राणी, पर हो एक ही सरना। जो जन पाहो

हर के रंग सदा गुण गा, हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सत्संग महाराम, ओ सखी हर मेल मिला, सुन हर कथा नाम लैला, हर हर

को जय श्री मल्ला पंजवा लड़िंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट तसे बसेरा रहाओ सूखा रातन दुखा रातन बिसरे न कहूं बेरा नाम जपत कोर सूर्य जारा बिन से परम देरा थान थनंतर सबनी थाई ज्योति से सो तेरा संत संग पावे जो नानक तिस बोर न होई है फेरा जय श्री महला पंजवा कर चौथा दुप दे इको अंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियाण पचिंत विसारी अंग छोड़ियो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहयो सौ तो सन पर्यो गुर पाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरियो सागर पावको जो संत पेटे वड पाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री मल्ला पंजवा मन में सतगुर ध्यान तरा दृढ़ियो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल यार महाजंजाला छुटके जमे डरा आयो दुख हरण शरण करना पत गयो चरण आसरा नाम रूपयो सात संग पौने दार परा अप्यो पियो गत थियो ब्रह्मा थियो परमा कहो नानक अजर जरा जय श्री मल्ला पंजवा जाको पे गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सगल स्यो वाको ब्याज नकाई रहो दिसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन्माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकर की से ही संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरी जिन रस रस हर गुण गाई जय श्री मल्ला पंजवा गोविंद जीवन।

0: सफल दर्शन तुमरा प्रप्रीतम चरण कमलया रूप अनक बार करूं ते बंदन मने चराऊं तूप आर पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक काढ़ ले हो नानक अपने को संसार पावक कै कूप। जय श्री मल्ला पंजवां। कोई जन हर सिउ देव जोर चरण गहूं बकों सुभ रसना दीजै प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचै सुधा संजोर या रस मैं मगन होत कृपा तै महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख पंजन चितमो तुमरी ओर अबे पद धान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन छोर। जय श्री मल्ला पंजवां। चात्रक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहो अनक सुख चकवी न चाहत अनद पूर्ण पेख दे आन पावना जीवत मीना बिन जल मरना ते हैं हमें नाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करे जन कमल नान के अरादे तिस बिन आन न के हैं। जय श्री मल्ला पंजमा। मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूर्ण पुरख सुजान रहो प्रेम ठगोरी जिनको पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कह न जाई कुदरत कमल हमारी लाए लाए लड़दास जन अपने उदरे उदर हारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक सरन द्वारे। जय श्री मल्ला पंजवा।
1: सतनाम
0: आए अनक।

बिन रघुनाथ शरण काकी लीजै। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सैभंग गुर प्रसाद राग टोडी मल्ला चौथा कर पहला हर बिन रह न सक।

एको अंकार सदगुर प्रसाद। संतन अवर न काहू जानी बेपरवा सदा रंग हर कै जा को पाख स्वामी राहो। उस माना ठाकर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो पग।

प्रसाद मांगो दान ठाकर नाम अवर कछु मेरे संग न चल मिले कृपा गुण धाम रहाओ राजमाल अनेक भोग रस सगल तरवर की चाम ताए ताए बोध विद को तावे।

नाम सुखाई सदा मेरे संग और नाम मोको निस्तार विखे बिलास कयत बो तेरे चलत न कछु संहार इष्ट मीत नाम नानक को और नाम मेरे भंडार टोडी मल्ला पंजमा निके गुण गाओ मिट ही रोग मुख जल मन निर्मल होई है तेरो इहां रहे वहां मुख जल मन निर्मल होई है तेरो रहे इहां वहां लोग रहो जन पकार करूं गुर सेवा मन चराम भोग छोड़ आपत बात अंकारा मान सोई जो होग संत टैल

पंजवा सतगुरु आयो सरन तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लहे हमारी रहो अवन सूजे दूजी ठहर हार पर्यो तो द्वारी लेखा छोड़ लेखे छुटे हम निर्गुण लेहो बारी सतबख्शन सदा मेहरबाना सबना दे अधारी नानक दास संत पाछे पर्यो राख लिहो है बारी टोटी मल्ला पंजवा रसना गुण गोपाल निद गायन शांत सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायन रहो जो मांगे सोई सोई पावे सेव हर के चरण रसायन जन्म मरण दुख ते छूटे पौजल जगत रायन खोजत खोजत तत् बिचार्यो दास गोविंद परायण अबनासी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण टोटी मल्ला पंजवा निंदक गुर कृपा ते हाट्यो पार ब्रह्म प्रपय दयाला शिव के बाण सिर काट्यो रहाओ काल जाल जम जो न सकै सच का पंथा थाट्यो खात खर्चत कछ निखुटत नाही राम रतन तन खाट्यो पसमा पूत हुआ खिन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कहे जन नानक सब देखे लोक सबाया टोटी मल्ला पंजवा किरपन तन मन किल विख परे साध संग भजन हर भजन कर स्वामी।

साध संग हर हर नाम चितारा, सहजनंद होवे दिन राती अंकर पलो हमारा। रहाओ गुरपुरा पेट्यो वडपागी, जा को अंत न पारा वारा, कर गए काड़ लियो जने अपना, बिख सागर संसारा। जन्म मरण काटे गुर बचनी, बौड़ न संकट द्वारा, नानक शरण गई स्वामी की, पुने पुने नमस्कारा। टोटी मल्ला पंजमा, माई मेरे मन को सुख, कोटि नंद राज सुख पुगवे, हर सिमरत बिनसे सब दुख रहाओ। कोट जन्म के किल विखनासे, सिमरत पावन तन मन सुख, देख स्वरूप पूर्ण पैयासा, दर्शन पेटत उतरी पुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तीन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गई सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। टोटी मल्ला पंजवा, हर चंद्र देव तारे, सिमर स्वामी सदगुरु अपना कार्य सफल हमारे। रहो गुण दान पूजा परमेश्वर, हर कीर्त तत् विचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया, ना ठाकुर यज्ञ में अपारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बहुर कछ न बिचारे, नाम रतन सुन जब जब पीवा, और नानक कंठ बजारे। टोटी मल्ला नामा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, कहूं कहां अपनी अदमाई, उर्जे कन कामणी के रस न कीरत प्रभ गाई। रहाओ जग झूठे को सा जान कासो रुच उपजाई, दीन बंद सिमरों ने कबो होत जो संग सहाई, मगन रहो माया मैं निस दिन छूटी न मन की काई, कह नानक अब नाहे अंतगत बिन हर की शरणाई। टोटी पानी भक्ता की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरह खजूर, काहे रे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिने छपायो। रहाओ पंडित हो के भेद बखाने, मूर्ख नाम दो राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेती, पतत पवित पय राम कहत ही। रहाओ राम संग नाम देव, जन को प्रतिज्ञा आय, एकादशी व्रत रहे काहे को तीर्थ जाई, पंडित नाम देव सुकृत सुमत पय, गुरमत राम कह को कोन बेकुंठ गए, तीन छंदे खेल आछे। रहाओ कुवार के कर हांडी आछे, राजा के कर सांडी गो, बामन के कर रांडी आछे, रांडी सांडी हांडी गो, बनिया के कर हींग आछे, पैसर माथे सींग गो, देवल मध्य लींग आछे, नींग सींग ही गो, तेली के कर तेल आछे, जंगल मध्य बेल गो, माली के कर केल आछ, केल बेल तेल गो, संता मद गोविंद आछ, गोकल

जो चाह सोई मन पायो, कर कृपा नाम दुआयो, सर्व सुख नाम उडायो, गुर प्रसाद नानक मात पाई। राग तरंग महला पहला, कर पहला ओंकार सतनाम करता प्रसन्न पवन अकाल मूर्ता जूनी साहब अंगुर प्रसाद। जग अर्ज गुफा तुम पेश को दार कोस कुम करतार, हक्का कबीर क्रीम कुम बेपा बे है प्रबदगा। दुनिया में काम दाम पानी तक एक दिल दानी, मामसर उए अजराइल गिरफते दिल हित ना दानी।

बेदनाई हर चरण शरण कड़कोट हुमारी काल कंटक जम तिस न बिदारी नानक दास दा बलवारी सेख संत राजा राम रारी सोई महला पंजवां गुण गोपाल प्रभु के नित गाह अनक बिनोद मंगल सुखता चाल सखी प्रभ रावण जा साजना की चरणी बहरा कर बिनंती जंतुर बिसा जन जन के कलुदा मन तन प्राण जी और पा हर सिमर सिमर मन कोट को मन मोकटा दीन दयाल कर उत्साह नानक दास हर सुन समाह सुई महला पंजवां वैकुंठ नगर जहां संत वासा प्रभ चरण कमल रिद्धमान वासा।

मन जो दिसे तन जम जगाती लुटे निर्वाण कीर्तन गाव करते का नेम कुसुमृत जित छूटे संतो सागर पार उतरिए जो जो वचन कमावे संतन का सो गुरु प्रसादी तरी राम।

मन माना प्रभजी पाणी भई निकाणी सफल जन्म परवाना भई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला कहो नानक हो निरभउ होई सो प्रभ मेरा ओला सूही महला पंजवां साजन पुरख।

अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार भया जग अंतर लाथे सगल विसूरे पूरन पुरख अच्युत अविनासी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेसर अपना नानक नाम त्याया नव निध सिद्ध रिद दीने करते तोट नया वैकाई राम खात खर्चित बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई ने खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिघन सगले उठ नाठे दुख न नेड़े आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावह स्वामी के आचरज जिस वडे आई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या बेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावह सदा करह जयकारा राम गुण गाए गोबिंद अण दे उपजे साथ संगत संग बनी जिन उदम किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी अठसठ तीरथ पुन किरिया महानिर्मल चारा पतित पावन बिरद स्वामी नानक सब दे आधारा गुण निधान मेरा प्रभ करता उस्तत।

से क्यों आग जला है। पावै जीवो कै मरो दूर हो ही भज जा है पौड़ी। तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करतै लिखिया। नावै जेवड़ होर दात नाही तिस रूप ना रिखिया। नाम अखुट निधान है गुरमुख मन वसिया। कर कृपा नाम देवसी फिर लेख ना लिखिया। सेवक पाए से जन मिले जिन हर जप जपया। सलोक महला दूजा जिनी चलन जानिया से क्यों करह विथार। चलन सारना जाननी काज सवारण हार। महला दूजा रात कारण धन संचिया भलके चलन होए। नानक नाल ना चलई फिर पछतावा होए। महला दूजा बदा चट्टी जो भरे ना गुण ना उपकार। सेती खुशी सवारी है नानक कारज सार। महला दूजा मन हठ तरफ न जिपई जे बहुता काले। तरफ जिणै सत भाओ दे ना जन नानक शब्द विचारे पौड़ी। करतै कारण जिन किया सो जाणै सोई। आपे सृष्ट उपाई अन्न आपे फुन गोई। जुग चारे सब भव थकी किन कीमत होई। सतगुर एक विखालिया मन तन सुख होई। गुरमुख सदा सलाही है करता करे सो होई। सलोक महला दूजा।

पौड़ी। माया मोह सब कूड़ है, कूड़ो होए गया, हो मैं झगड़ा पाए होण, झगड़ै जग मोया। गुरमुख झगड़ चुकाए होण, एको रब रहिया, सब आत्म राम पछाणिया, भौजल तर गया। ज्योत समाणी ज्योत विच हर नाम समया, सलोक महला पहला। सतगुर भीख्या देह मैं तू समरथ दा तार, हो मैं गर्भ निवारिया काम क्रोध अहंकार। लभ लोभ पर जालिया नाम मिले आधार, अहनस नवतन निर्मला मैला कबहू ना होए। नानक यह बिद छुटिया नदर तेरी सुख होए, महला पहला। एको कंत सबाइया जिती दर खड़िया, नानक कंत रतिया पुछ है बातड़िया, महला पहला।

राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की एको अंकार सतगुर प्रसाद सह की सार सुहागन जानै ताजे बिमान सुख रलिया मानै तन मन दे नांतर राखै अवरा देख न सुनै अपाखै सो कद जानै पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई रहाओ दुखी दुहागन दोए पख हीनी जिन नाह निरंतर भगत न कीनी पुरस लात का पंथ दुहेला संग न साथी गवने केला दुखिया दर्द वंद दारे आया बहुत प्यास जवाब न पाया कह रविदास सरण प्रभ तेरी जो जान हो त्यो कर गत मेरी सूही जो दिन आवह सो दिन जाही करना कूच रहन फिर नाही संग चलत है हम भी चलना दूर गवन सिरी ऊपर मरना क्या तू सोया जाग आना तै जाग तै जीवन जग सच कर जाना रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अम्बरावै सब घड़ भीतर हाट चलावै कर बंदगी छाड़ मैं मेरा हिरदय नाम सम्हार सवेरा जन्म सिरानो पंथना सवारा सांझ परी दह दिसे अंधियारा कह रविदास निदान दीवाने चेतस नाही दुनिया फन खाने सूही ऊचे मंदर सार रसोई एक करी फुन रह न होई एहो तन ऐसा जैसे घास की टाटी जल गयो घास रल गयो माटी रहाओ भाई बंद कुटंब सहेरा ओए भी लागे काट सवेरा घर की नार उरह तन लागी ओह तो भूत भूत कर भागी कह रविदास सबै जग लूटिया हम तो एक राम कह छूटिया।

सहल होई सो सहलोर। तै सह मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस। तै साहेब की मैं सार न जानी, जोबन खोए पाशे पछतानी रहाओ। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो ब्रह जाली। ब्रह बिहून कतह सुख पाए, जा होए कृपाल ता प्रभु मिलाए। विदन पूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल हो बेली। वाट हमारी खड़ी उड़ीनी, खन्यो तिखी बहुत पईनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, सेख परिदा पंथ सम्हार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद ना सकेओ, बंधन की वेला। पर सरवर जब उछलै तब तरण दुहेला। हाथ ना लाए कसुंबड़ै।

निरंजन देओ हो जाचिक तू अलख अपेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार पूंडी कामण कामण यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानण अंधियार। चख छोटी सहसा नहीं कोए, बाप दसै वे जात ना होए, एके को नाही भो कोए, करता करे करावै सोए। सबद मुए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मन साचै धारिया, वरना सूजै गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुर बचनी मन सहज ध्याने, हर कै रंग रता मन माने, मनमुख भरम भुले बौराने, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जीरा रह ना सकै, खिन सतगुर पूज बुझाई रहाओ। मेरा प्रभ बिसरै हो मरो दुखाली, सास ग्रास जपो अपने हर पाली, सद बै रागण हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली। अकात कथा कहिए गुर पाए, प्रभ आगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हो मैं मेट चलै गुर शब्द समाए। मनमुख विछड़ै खोटी रास, गुरमुख नाम मिलै साबास, हर कृपा धारी दासन दास, जन नानक हर नाम धन रास। बिलावल महला तीजा, कर पहला एको अंकार, सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटंब सहत स्यों, जित हुण खसम न पाया।

क्या यह जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझते होए ऐसा आख बखाणे गुरमुख होवै सो मुक्त कहिए मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहै हर नाले तिनकी गहन गत कही न जाई सच्चै आप सवारे भरम भुलाणे से मनमुख कही है ना उरवार न पारे जिसनु नदर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले हर जन माया मह निस्तारे नानक भाग होवै जिस मस्तक कल है मार बिदारे बिलावल महला तीजा अतुल क्यों तोलिया जाए दूजा होए तां सोझी पाए तिसते दूजा नाहीं कोए तिसदी कीमत किकू होए गुर प्रसाद वसै मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराफ कसवटी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने एको सोए माया का रूप सब तिसते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगै तिसे आए सब सच दिखाले तां सच समाए

मन तन सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा घर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। उदम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यो करना। ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती त्यो बाज है जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया। हर हिरदय हर बसना रहाओ माया गिरसत भ्रमत है प्राणी। रख लेव हो जाने अपना जो प्रहलाद हर नाखस ग्रस्यो। हर राख्यो हर सरना कवन कवन की गात मित कहिए। हर किए पतित पवना ओह ढोवै ढोर हाथ चम चमरे। हर कुदरियो परियो सरना प्रभ दीन दयाल भगत पवतारण। हम पापी राख पपना हर दासन दास दास। हम करियो जन नानक दास दासना। बिलावल महला चौथा। हम मूरख मुगद अज्ञान मति शरणागत पुरख जन्मा। कर कृपा रख लेव हो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन भज राम नामै रामा गुरमत हर रस पाइय। होर त्याग होने फल कामा रहाओ। हर जन सेवक से हर तारे हम

भला सब कोई बाशै सो करै जे मेरै चितना चितैनी। मन की मत त्यागो हर जन एहा बात कठैनी। अणदिन हर हर नाम त्यागो गुर सतगुर की मत लैनी।

आप ही मस्त आप ही बलना आप ही अशालना जाई छलना आप ही गुप्त आप परगटना आप ही घट घट आप लिपना आपे अवगत आप संग रचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवा भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरवड़ भागी पाया।

मन लीना बंधन काट मुक्त गुर कीना दुख सुख करत जन्म फुन मुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया अगन सागर बूढ़त संसारा नानक बाह पकर सतगुर निस्तारा बिलावल महला पंजवां तन मन धन अर्पो सब अपना कवन सो मत जित हर हर जपना कर आसा आयो प्रभ मांगन तुम पेखत सोभा मेरे आगन रहाओ अनक जुगत कर बहुत बीचारो साथ संग इस मन है उधारो मत बुद्ध सुरत नाही चतराई ता मिलिए जा लय मिलाई नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया कहो नानक सफल सो आया बिलावल महला पंजवां मात पिता सुत साथ न माया साथ संग सब दुख मिटाया रव रहया प्रभ सब मह आपे हर जप रसना दुख न व्यापे रहाओ तिखा भूख बहु तप्त व्यापया शीतल भय हर हर जस जापया कोट जतन संतोख न पाया मन तृप्ता न हर गुण गाया देहो भगत प्रभ अंतर जामी नानक की बेनंती स्वामी बिलावल महला पंजवां।

पार ब्रह्म तू बक्सिया संतन रस भोग रहाओ। सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तानिया रोग गुण गाव हो नित राम के एह अवखद योग।

माटी से ओ माटी रली नागा उठ जाई। जाके कीऐ श्रम करै ते बैर विरोधी, अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलहो क्रोधी। दास रेण सोई होआ जिस मस्तक करमा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बिलावल महला पंजवा। पिंगल परबत पार परे खल चतुर बकीता, अंधले त्रिभवन सूजिया गुर भेट पुनीता। महिमा साधु संग की सुनहो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भय चीता। रहाओ ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता, जो जो कीनो आपनो तिस अभय दान दीता। सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दिखीता, श्रम करते दामे आड़ को ते गणी तनीता। कवन वडाई कह सको बेअंत गुनी।

हर हर हर हरे हर हर हर हेत उठत बैठत सोवते हर हर हर चेत रहाओ पंच चोर आगै पगे जब साथ संगेत पूंजी साबत घणो लाभ ग्रह सोभा सेत नह चल आसन मिटी चिंत नाही डोलेत भरम भुलावा मिट गया प्रापे खत नेत गुण गंभीर गुण नायका गुण कहियह केत नानक पाया साध संग हर हर अमृत बिलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी मिलत संग सब भ्रम कट मिटे गद पई हमारी जा दिन भेटे साध मोह वा दिन बलिहारी तन मन अपनो जीरा फिर हो बारी रहाओ एत छडाई मोहै ते इतनी दृढ़ तारी सगल रेन एहो मन भया बिनसी अवधारी निंद चिंद पर दुखना ए खिण मह जारी।

दयाल। निस्वासुर मन अनद होत चितवत कृपाल रहाओ। जगत उदाहरण साध प्रभ तिन लागह पाल। मोको दी जैदान प्रभ संतन पगराल। उकत स्याणप कछ नहीं नाहीं कछ काल।

लोड़ह सो करह तुझ बिन कछ नाहै, प्रताप तुम्हारा देख कै जम दूत छड़ जाहै। तुमरी कृपा ते छूटिय बिनसै हमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजिया नामै बिनकूर, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लाभ हो तित तित लगहै स्याणप सब जाली, जातकात तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किश तुम ते मांगना वड़ भागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बिलावल महला पंजवां, साध संगत कै बास बै कलमल सब नसना। प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना, नाम कहत गोविंद का सूची भई रसना। मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना रहाओ। हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट भई उल्ट कमल विगसना। शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा, दहद स्थावत मिट गए निर्मल थान वसना। राखण हार राखिया भय भ्रम भसना, नाम निदान नानक सुखी पेख साध दर्शना। बिलावल महला पंजवां, पाणी पखा पीस दास कै तब हो है निहाल। राज मिलक सिकदारिया अग्नि मह जाल, संत जना का शोहरा तिस चरणी लाग। माया धारी छत्रपात तिन छोड़ो त्याग रहाओ। संतन का दाना रूखा सो सर्व निदान, ग्रह साकत छत्तीह प्रकार ते विखु समान। भगत जना का लूगरा ओढ़ नगन न होई, साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। साकत स्यो मुख जोरे अद बीच हो टूटै, हर जन की सेवा जो करे इत ऊत है छूटै। सब किश तुम ही।

नाठे अंधकूप में गलत थे काटे दे हाथे। ओए हमारे साजना हम उनकी रेन, जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन रहाओ। परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए, बस संग हर साध कै पूर्ण आसाए। भै बिनसे तिहो लोके पाए सुख थान, दया करी समरथ।

मन तन शीतल सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग रहाओ। औखद हर का नाम है जित रोग ना व्यापै, साध संग मन तन हितै फिर दुख ना जापै। हर हर हर हर जापिय अंतर लिवलाई, किल विखि उतरहै सुध होए साधु सरणाई।

अंडज जेरज सेतज उत्पुजा प्राप की यह किरत किरत कमावन सर्ग फल रविय हर निरत हम ते कछु न होवना सरण प्रभ साध मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड बिलावल महला पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो पन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ आपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिय प्रभ संग रहाओ वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो।

कमावत सब सुखी किश ऊन ना दीसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूरण जगदीसै जय जयकार सबै करहै सच थान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया बिलावल महला पंजवा हर हर हर आराधिया होइया आ रोग रामचंद की लस्तका जिन मारिया रोग रहाओ गुर पूरा हर जापिया नित कीचै भोग सात संगत कै

दास तेरे की बेनती रद कर परगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास। चरण कमल का आसरा।

संतन कै सुनियत प्रभ की बात, कथा कीर्तन आनंद मंगल धुन पूर रही दिन सियर रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात, आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात, चरण सरन नानक प्रभ तेरी, कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवां।

मोहि रखो मोहि मसली तुम धीर तुझ बिन दूसरा मोहि चातक तुम बूंद प्रभु तो मुख पर हरे प्यास।

प्रश्न नागती जप अंतरंगी राम एक तिल प्रभु न विसरी जिन सब कह दी ना राम बड़भागी मेला बड़ा गुरमुख प्रति ना राम बाप अगर कम से कर दिया कार अपना ली ना राम ना जपत नानक जीवे शीतल मन सी ना राम त्यागुण तेरे कह सकू

सब जानू तब दरगाह सो पावो संतो ऐसी कथो कहानी स्वर पवित्र ना दे पवित्र आखिन बोले गुरमुख बाणी रहाओ। परपंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो ना कोई सतगुर मिलो नवैनित पावो इन विद तत् विलोई भरम चुकावो गुरमुख लिव लाहो आत्म चीनो भाई निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किस्यो करो बुराई सतगुर मिलया मार्ग मुक्ता सहजी मिला स्वामी धन धन सी जन जिनी कल मैं हर पाया जन नानक सतगुर बानी राम कली महला पंजवा आप हरकना जाप दुखा नै।

काज हमारी पूरी सतगुर बाजी अनहद तूरी सतगुर रहाओ। महमा जाकी गहर गंभीर होए निहाल दे जिस धीर जाके बंधन काटे राय सोनार बहर न जोनी पाए जाकै अंतर प्रगटे आप ताको नाही दूसन ताप लारतन तिस पालै परिया सकल तांबो जानलै तरिया ना कुछ भरम न दूता दूजा एको एक निरंजन पूजा जात का देखो आप दयाल कहो नान प्रा मिले रसाल राम कली महला पजवा तांते छुटकी अपनी धारी प्रभ की आग्या लगी प्यारी जो किश करै सुमन मेरा मीठा तायो चर जनै नू डीठा अम जानी रे मेरी गई बलाए बुझ गई तृष्ण निवारी ममता गुरपुरा लियो समझाए रहाओ। कर कृपा राखियो गुर सरना गुर पकराए हर के चरना बीस

दुख अंधेरा मंगते जाए, दुर्मत बिन सारा चाहर नाए। शरण कमल सिंह लागी प्रीत, गुर पूरे की निर्मल रीत। पाओ पागा निरपाओ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै। कूट जन्म के काटी फाही, पाया लाभ सचा तन लाही। टूट ना आवे खुट पंडार, नानक भगत सोहे हर द्वार। राम कली महला पंजवा।

संतन की सुन साची साखी सूल जुपी कह आखी नहीं लीपत सुन न पाप नानक का प्रव्यापे आप राम करी महला पंजवा किसु काज न कियो जान सुरत मत नाहीं किस ज्ञान जाप ताप सील नहीं तर।

तेरा संगी कवन। राम संगीत सगत नहि जान, पंच बटवारे से मीत करमन। सो कर सेव जित उदरह देव, गुण गोविंद रवि हदन राति।

निर्मल सबदि मैल गुवाई त्रैगुण अचीत नाम चीत नाही बिन नावै बिन सजाई ब्रह्म विष्णु महेश त्रै मूरत

सबको कह। आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किलबे कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका सब सचै सवारिया। कह नानक इहो आनंद है, आनंद गुरु ते जानिया। बाबा जिस तूं दे सोई जन पावै, पावै त सो जन दे जिसनों होर क्या करह विचारिया।